कोई उससे को जिसको दूसरे जो दे देते गया छह से भी है जैसे मैदान उच गया एक नो निस्त नो निसोस किया स्तम दिनो गया थे चीज का सदा हो चेस को दूसरे च गया एक नो आई स्तम दिनो निशत तो गया मैदान उच है सीनियर सॉफ्टबॉल एक न है स्तम दिनो बेग तो आई है एन फास्ट पिच टूर्नामेंट ये तो दाग नोच गया एक नो जितना बेउच है बिहाग नोच तो हान किया ये सॉफ्टबॉल के स्कोच फास्ट पिच ये सॉफ्टबॉल एक न्यूज़ है मेडवेड हो गया एक नौ आई है उधर के आई चेस भी गया एक दिन देख पाते कुन मेडवानोच आई उगया जेट्स को दूसरे जिया एक कई ससमक पस का जिम्स नो सोच के वन जा इच मेडवेड हो मचुती चेस भी वीमेन जी वाज वन पी एक नौ आई जब मैं दोनों चीज़ का वो निश्चित नो निश्चित तो जिसको ऐसे देखो तेज़ बिच का मैं दोनों चीज़ का अग्नि मैं दोनों तो बाज़ मौन

कोई उससे को जिसको दूसरे जो दे दे गया छह सी बी एक देश मैं दुआ नोच गया एक नो निस्त नो नि सॉस किया स्तम दिनो गया थे चीज का सदा हो चेस को दूसरे गया एक नो आई स्तम दिनो नीश तो गया मैं दुआ नोच है सीनियर सॉफ्ट बॉल एक है स्तम दिनो बेग तो आई है एंड फास्ट पिच टूर्नामेंट ये तो दाग नोच गया एक नो जितना बेउच बिहाग नुस दुहान किया सॉफ्ट बॉल के स्कोच फास्ट पिच ये सॉफ्ट बॉल लेकिन ये मेडवेड हो गया एक नो आई है वो देखे आई चेस भी गया एक दिन दस पातुगन मेडवानोच आई वो गया जेट्स को दूसरे जी गया एक आई ससमक पस का जिम्स नो सोच गया वन जे इच मेडवेड हो मचुची चेस भी वीमेन जी वाज वन पी एक नो आई जी मेडवानोच गया वो निश्चित नो निश्चित जिसको इस दिन टेक जेट्स बीच गया मेडवानोच एक अग्नि मेडवेल द बाज मोन